0: As we continue through, we have Auntie Ram Dulari and Mr. Ram Simmer Hanuman. Most lovely day ahead to you and to your lovely family.
1: जिस मुख से सियाराम का नाम निकलता है उस भक्त पर हनुमान जी स्वयं कृपा बरसाते हैं राम नाम में ही जीवन का सार है

ऑलवेज हैव प्रसाद टेक प्रसाद दिस इवनिंग भगवान अगेन वी हैव कम टू योर लोटस लाइक इट एज यू परफॉर्म दिस पूजा विद लव एंड डिवोशन भगवान